दीवाना मोहब्बत से कहीं डर के रुका है, दरबार में चाहूं कि कहीं इश्क झुका है, खुद इश्क से डर

देख जरा ये टोप, पहन के बन जा गोप रे बेटा, पहन के बन जा गोप, काली चमड़ी गोरी कर दे ये लक्ष का तोप रे बेटा, ये लक्ष का तोप, काली चमड़ी गोरी कर दे ये लक्ष का तोप रे बेटा, ये

0: तेरे लिए मैं देख ये लाया होठों की लाली, अब शादी में होगी न देर, अब शादी में होगी न देर।
1: वारे मेरे शेरवा, मेरे शेरवा, मेरे शेरवा।

से घूम के आए बम्बई पूना झांसी और बताओ क्या क्या लाए। शहर की काली खांसी और ये अंग्रेजी फांसी। चले हल्के तिलक तो हो गले भी कैसे द।

दुखन कही प्यारी तड़पती हूँ मैं आरज़ू मैं छुपाए तड़पती हूँ मैं आरज़ू मैं छुपाए छुपा कर नसीब।

जेब जब तक है तेरी भरी, तेरे पहलू में नीलम परी। जेब जिस दिन भी खाली हुई, जान रह जाएगी।

चल मेरे दिल चले हम वहाँ, ना पैसे का लफड़ा जहाँ। ये तो दुनिया है व्यापार की, इसमें अपना ठिकाना कहाँ। बचताना ना छोड़।

तेरा मेरा मेरा तेरा मेरा तेरा तेरा मेरा तेरा मेरा मेरा तेरा था ए घटा परत जा।

तेरा मेरा मेरा तेरा मेरा तेरा तेरा मेरा तेरा मेरा मेरा तेरा घटा ओ बरस जा।